0: अर्चनाको प्रसारणपछि अब रिले गरिरहेछौ दिल्ली केन्द्रका संस्कृत र हिन्दीमा समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बर मासस्य 28-29 दिनाङ्कयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलङ्घ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिन्दूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुम्बय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमन्त्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मन्त्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय सम्बन्धान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मन्त्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉ जयशंकरः अवदत् यत् इयं मन्त्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च सम्बन्धानां दृढीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषिमन्त्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृष्योत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणाम् आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां सम्प्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः कालविपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरम नगरे प्रथमायाम् एकदिवसीय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलं पराभूय भारतेन 8 स्तोभैः विजयं समधिगतम्। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को

0: आसानी से जान सके, इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
2: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
7: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
3: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
8: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: और अब खेल खबरों के साथ है सिद्धार्थ सिंह।
9: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, एसआईटी गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
3: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the line of control.
12: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
11: The Prime Minister said that India's counter-terrorism approach has continued to evolve over the past decade, citing the Balakot airstrike and Operation Sindoor as examples. Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to activist Ashok Singhal. In an article for an English daily, Mr. Modi said Ashok Singhal's life reflected a cherished ethos. The pursuit of others' welfare acquires far greater meaning than individual achievement. Mr. Modi said that starting from yesterday, the nation marks to celebrate the birth centenary of the outstanding personality of Ashok Singhal. The Prime Minister added that Ashok Singhal worked towards strengthening social unity and equality. He said that Ashok Singhal was blessed with the clarity of thought that there could be no distinction of any kind in society and every individual deserved equal dignity and respect. The Prime Minister said it was his privilege to get innumerable opportunities to interact with Ashok Singhal. The proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association. In a social media post, the All India Banks Employees Association said that this decision was taken after a meeting held between the Indian Banks Association and the United Forum of Banks Unions last night on the issues related to the strike. The centre has launched a project to build a national digital public infrastructure for the tourism sector, which will enable users to access a wide range of products and services on a shared digital space. The Ministry of Tourism has joined hands with the Open Network for Digital Commerce to build the National Digital Tourism Stack with a target to bring and onboard 23,000 tourism experiences and homestays and make them discoverable, trustable and bookable by the end of 2028. More from our correspondent.
13: Union Tourism Minister Gajendra Shekhawat launched the project at a function held at the Bharat Mandapam to mark World Tourism Day yesterday. The National Digital Tourism Stack, being developed in collaboration with the ONDC and with the support of the International Centre for DPI Innovation and Advancement, aims to make India's tourism offerings more discoverable, accessible and trustworthy. Envisaged as a collaborative effort involving the ministry, states, union territories and the industry, the programme will be implemented in phases. Tourism Secretary Bhuvnesh Kumar said artificial intelligence will be on the front end of the project. He said the vision behind the National Digital Tourism Stack is one ticket, one pass to bring all of India together in a single journey. Esika Shaw, Akashwani News, Delhi.
11: The nation celebrates 119th birth anniversary of the great revolutionary Shaheed-e-Azam Bhagat Singh today. It was on this day in 1907. Bhagat was born in village Banga in the Lialpur district of Punjab, now in Pakistan. More from our correspondent.
7: Bhagat Singh was born in a family of revolutionaries and was the second among seven siblings. He was lovingly called as Bhagamala, meaning the lucky one. He proved his name for the freedom of the country by sacrificing himself along with Rajguruji and Sukhdevji. A state-level program titled Jashn-e-Inqilab has been scheduled at Ludhiana Agriculture University to celebrate his birth anniversary by organizing cultural events. People are also visiting his native village Khatkat Kalan Shahid Bhagat Singh Nagar to pay their respects to the great son of the soil. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
11: This is Akashwani giving you the news.
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
11: Welcome back to Morning News on Akashwani. The Election Commission of India has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision 2026 in Delhi. A report.
14: The Special Intensive Revision SIR 2026 is currently underway in Delhi, and with the scheduled revision announced by the Election Commission, the last date to file claims and objection will be the 30th of next month. According to the Chief Electoral Officer of Delhi, the notice phase or disposal of claims and objections will be till 30th of November, and the final electoral roll will now be published on 4th of December. Earlier, special camps were organized at all polling station locations of NCT of Delhi for enrollment of new voters through Form 6. Samar Singh for Akashwani News, Delhi.
11: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through visionary initiatives such as the National Maritime Heritage Complex at Lothal.
1: Rising beside the ancient Harappan dockyard at Lothal in Gujarat, the National Maritime Heritage Complex is being developed as India's first national institution dedicated to showcasing over 4,500 years of country's rich maritime history. Designed as world-class cultural landmark, the complex will feature the world's tallest lighthouse museum and a dedicated naval gallery showcasing

बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल चलचित्र मेरी जंग। गर्मी है चलचित्र मकसद। दिल में हो तुम आंखों में तुम चलचित्र सत्यमेव जयते

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: र सन्देशपछि सोधागन अब आउनु सुनौ आजको सन्दर्भको विषय जो रहेको छ, सडक अनुसार नागरिकको जिम्मेवारी। सडक सुरक्षा अनि यातायात अनुशासन केवल सरकार या प्रशासनको मात्रै होइन तर हरेक नागरिकको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण नैतिक र सामाजिक जिम्मेदारी हो। सडकमा हिँड्ने हरेक व्यक्ति, चाहे ऊ वाहन चालक होस्, पैदल यात्री होस् या त साइकल चालक नै किन नहोस्, सबैका केही बुनियादी कर्तव्य हुँदछ जसलाई पालन गरेर दुर्घटनाहरूलाई रोक्न सकिनेछ। वाहन चालकले ट्राफिक सिग्नल, गति सीमा र लेन अनुशासनको पालन हरेक दिन गर्न पर्दछ। वाहन चलाइरहेको समय मोबाइल फोनमा बातचित गर्नु, टेक्स्ट म्यासेज पठाउनु या एयरफोनको प्रयोगले ध्यान भट्काउने गर्दछ, यसबाट बाँच्न पर्दछ। पैदल यात्रीहरूले पनि जेब्रा क्रसिङको प्रयोग या ओपन हेड फुट वर्कको आयोजना गरेर धेरै राम्रो हुनेछ। उनीहरूले हमेसा फुटपाथमा हिँड्ने बानी पनि बसाल्न पर्दछ। चलिरहेको गाडीबाट या सडकमा फोहोर मैला नफ्याँक्यौँ। पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्न पनि एक जिम्मेवारी नागरिकको पहिचान हो। यदि सडकमा कुनै दुर्घटना भइगएमा घाइते मानिसहरूलाई तत्काल मद्दत गरौँ अनि आपतकालीन सेवाहरूलाई सूचित गरौँ। यसरी सडकमा तपाईँको एउटा सानो सावधानी र जिम्मेवारीले आफू स्वयंको साथै अन्यको किमती ज्यान जोगिन सक्दछ।
4: ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া দুটি হতে পারে মশাবাহিত রোগ।
5: ডেঙ্গুতে আর ম্যালেরিয়ায় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা, ঘাম, সঙ্গে মাথা ব্যথা, তীব্র পেট ব্যথা, শরীর ব্যথা, প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।
4: এসব লক্ষণ দেখা দিলে নিজে থেকে ওষুধ না খেয়ে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
5: বাসস্থানের আশেপাশে জমা জল পরিষ্কার করুন, চারপাশ পরিষ্কার রাখুন, মশারি ব্যবহার করুন, মশার বংশ বিস্তার রুখুন।
4: সচেতন থাকুন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ করুন। স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
3: এটা সুমধুর হিন্দি চলচ্চিত্রের গীত জড়াই সৌদাগর চলচ্চিত্রবাট লতা মঙ্গেশকর স্বরমা, গীত সঙ্গীত রবীন্দ্র জৈনক গীতমা।

0: साँच्चै नै आज गुमनाम छिन् स्वरको किला भारत रत्न लता मङ्गेशकर, तर भौतिक रूपमा मात्र। तर उहाँको स्वर अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, उहाँको आवाज, उहाँको स्वर कालजै छ, अनि उहाँको स्वरले सारा विश्व ब्रह्माण्डमा राज गरिरहनेछ, जबसम्म रहनेछ यो संसार कायम। त यो गीत सुधागन हामी सुनौँ एउटा सन्देशलाई यहाँनिर।
1: बुखार आया है, इसे नजरअन्दाज ना करें।
2: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
1: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
2: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा ना ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
1: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
2: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
0: सधैँ सन्देशपछि अब यहाँनिर सुनौँ एउटा सेगमेन्ट हाम्रो हातमा रहेको छ, हामी झट्टा झट्टी भनिहाल्छौँ किनभने समय धेरै थोरै छ। एउटा गीत हाम्रो साथमा छ, विधेयक गीतको रूपमा यो सेगमेन्ट हो घरेलु औषधिको, जसमा छ एउटा औषधि, त्यो के भने सुन्निए र दुखिरहने ठाउँमा या पिलोको घाउमा तित्रीको पातहरू पिसेर बाँधिदिनाले ती दुखाइ र घाउहरू निको भएर जानेछन्। त यसलाई त्यसपछि तपाईँले कोही समय यसो प्रयोग गरी हेर्नु होला भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव छ श्रोतागण। र अब हामी कार्यक्रमको विदाई गीतमा आउनेछौँ किनभने समय ठिक 10:30 मात्र हाम्रो रहेको छ अहिले खरसाङको, अनि 10:30 अर्को कार्यक्रमतर्फ हामी निश्चयमै जाने भएका छौँ। र यो अन्तिम गीत रहेको छ पुनः एकपल्ट लता मङ्गेशकरकै स्वरमा, जसमा छन् सहगायकको रूपमा अमित कुमार पनि। गीत हो चलचित्र लभ स्टोरीबाट, गीतमा बोल अनन्त बक्सीको, धुन आरडी बर्मनको। त स्वरको किला भारत रत्न लता मङ्गेशकरलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप यो गीत हामी छोड्छौँ उहाँको आजको पावन जन्मदिनमा। अनि यो गीतलाई छोड्दै हामी यस कार्यक्रमबाट हेलो खरसाङबाट हाम्रा प्राविधिक मित्र सिल ब्राह्मण अनि प्रसारण सहयोगी कल्पना छेत्रीको साथमा तपाईँको साथी मित्रमा बिरयानी पनि ओझेल पर्दछु। ठिक 10:30 अघिल्लो कार्यक्रम हाम्रो सरकार लिएर आउनुहुनेछ उद्घोषिका दिपा। नमस्ते।

पागल सा खूंखार आदमी क्यों मेरे मुंह लगते हैं, मेरी आंखें हैं निशानों पे निशाने, कभी ना चूके हैं, ये खुद नहीं खरीदी ये पुश्तैनी बंदूकें हैं। मैं तेरी तरह हर बात ना अपने बॉस को एस्केलेट करूं, मेरी रुकती नहीं बंदूक मार, गोलियां छाती में छेद करूं, मार मार मार मार मार मार छेद करूं मैं, मार मार मार गोली छाती में छेद करूं मैं, मार मार मार मार मार मार छेद करूं मैं।

0: श्रोता समय यस बेला पूर्वान्न 11 बज्ने लाग्यो। अबसम्म प्रसारण गरी सुनाउन लागिरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिंटशिवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम 103.5 मेगाहर्जमा हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेछौँ। अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ सङ्गीतमय प्रस्तुति स्वर माधुरी, र जसमा सदा चाहिँ आज पनि लिएर आएका छौँ विविध कलाकारहरूको आवाजमा सजिएका आधुनिक गीतहरू। त प्रथममा राखिरहेछौँ वाङ्गेल लामाको स्वरमा यो साङ्गीतिक प्रस्तुति।

0: श्रोता समय यस बेला मध्याह बाह्र बज्ने लाग्यो। अब समा प्रसारण गरी सुनाउन लागिरहेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने

0: अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों की जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समय यस बेला दिउँसोको 12:05 भइरहेछ। अब प्रस्तुत छ आकाशवाणी खरसाङको लोकप्रिय कार्यक्रम तपाईँको अनुरोधमा। श्रोता, गीत तपाईँको, फरमाइस तपाईँको, तर सङ्गीतको मिठास पनि हामी सबैको। त्यसैले तयार हुनुहोस् तपाईँले रोजेका, तपाईँले मागेका र तपाईँले मन पराएका फिल्म सङ्गीतसँग रमाउन। स्वागत छ फरमाइसे फिल्म सङ्गीतको कार्यक्रम तपाईँको अनुरोधमा। म दिपा यहाँहरूको साङ्गीतिक साथमा त कार्यक्रमको प्रथम अनुरोध सङ्गीत राखिरहेछौँ सावरिया चलचित्रबाट सेल हाडाको स्वरमा। सङ्गीत मोन्टीको अनि शब्द रचना रहेको छ समीरको। र यस गीतको निम्ति अनुरोध छ यहाँहरू सबैको बिहार कलोनी लोनीबाट नसिमुल इस्लाम गुनौरी अनि प्रकाशवीर राजपूत, बिहारीपुर खण्डवाबाट पिङ्की अनि रिङ्की, जेल रोड रायगढबाट लालचन्द मिश्र, रमेशचन्द अनि कुमकुम मिश्र, मेन रोड राजविराज नेपालबाट मोहम्मद अताउल्ला, जिनत जहाँ सोनी परवीन अनि इम्तियाज आलम, पुराना तलाब डुम्राबाट वलिउल्ला अन्सारी अनि आसमानाज अन्सारी साथै सोनम, सरिमपुर बक्सरबाट सरफुद्दिन अन्सारी, फातमा अन्सारी अनि मोहम्मद समी अन्सारी, इन्दिरा बिहार दिल्लीबाट डब्लु अन्सारी अनि बेबी अन्सारी, छटिया पोखरा डुम्राउबाट लालबाबु दिवाना अनि दिव्या भारती, मेन रोड फारबिसगंज बिहारबाट प्रकाश कुमार, नैतिक पिहू अनि विमल, नवरतन हातबाडी पूर्णियाबाट ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु अनि डब्लुजी, मेसोल सीतामढी बिहारबाट अक्रम हुसेन, बेगम इसरत अक्रम, वसिम अक्रम, रुबिना वसिम, आरिस वसिम, नदिम अक्रम, समीम अक्रम, अमन अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, बच्चु शेख अनि चिना शेख, कोहाद बिहारबाट शेख जफर हसन अनि नर्गिस जफर, नूरमहल मेसोलबाट हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अभिया नाज, अरान बाबु, हम्जा अनि मुजमिल, मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्रबाट अभिजित गुहानकर, सरिता गुहानकर, सिद्धान्त अनि प्रिन्स एकांश गुहानकर, विश्वकर्मनगर नागपुरबाट शैलेश गुहानकर, वैशाली गुहानकर, श्वेता, सुमित अनि ध्वनि गुहानकर, शान्तिनगर बिलाई छत्तीसगढबाट प्रदीप कुमार शाह, प्रतिमा शाह अनि सन्देश शाह, पुना महाराष्ट्रबाट बिना आदिश मेहता अनि माही मेहता, अप्पर सिरुवारी खरसाङबाट एसएम दर्नाल, सुषमा सिंह, स्वयं दर्नाल, शीला राई, पुष्प छेत्री, करुणा अनि विनोद, यहाँहरूको अनुरोधमा राखिरहेछौ कार्यक्रमको यो पहिलो प्रस्तुति।

राज पेलेस मौनाथ बञ्चन उत्तर प्रदेशबाट राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक अनि आर्यन शिव मन्दिर हकिकतपुरा मौनाथ बञ्चन उत्तर प्रदेशबाट मुन्ना स्वर्णकार पिङ्की स्वर्णकार रितेश कृष्ण पिहु अनि परिवारका अन्य सदस्यहरू बढी खञ्जरपुर भागलपुर बिहारबाट गुल्फराज आलम बेगम समाहारा अनि जमालुद्दिन शाह मार्केट भागलपुरबाट सिटिजन मास्टर अनि हुसेन मास्टर डेन सिंह रोड भागलपुरबाट अफरोज आलम बरकत आलम अनि सदाब जतुका किशनपुरबाट आलम दिलकस सबनाना सुरिजवान राई इमरान राजा आलम शेख सबना आलम अनि चाँदनी नास गठिया मौजे उस्तुबाट प्रदीप कुमार मण्डल आशिष मण्डल कुन्दन करिना कुमारी पूजा कुमारी आरती अनि सुनिता देवी पुस्तकालय रोड फारबिसगंज बिहारबाट शम्भु प्रसाद गुप्त कुन्ती देवी प्रेम कुमार गुप्त कृष्ण कुमार गुप्त अनि नन्दकिशोर गुप्त डल्लुटोला फारबिसगंज बिहारबाट सिराज परवाना अन्सारी बेगम राजा सौरभ तरन्नुम तबस्सुम इख्तियार बल्ला मास्टर अनि प्रदीप रौनियार गर्ल्स स्कुल रोड मणिहारीबाट अवधेश गुप्त भोलु निलु विशालराज अनि वंशराज यहाँहरूको अनुरोधमा अब कार्यक्रमको अघिल्लो प्रस्तुति राखिरहेछौँ सोनु निगम अनि मा लक्ष्मी अय्यरको युगल स्वरमा चलचित्र सलाम नमस्ते अनि यस गीतमा सङ्गीत रहेको छ विशाल शेखरको अनि शब्द रचना जयदीप साहनीको।

0: benchmark domestic equity indices witnessed a sharp decline and were trading around 1.3% lower during the afternoon session today. The Sensex tumbled nearly 1,000 points, falling below the 73,000 mark. The Nifty shed 306 points to 22,835 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index cracked 1.4% and the small-cap 100 index slid 1.6% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court refuses to stay the centre's decision to impose merchant discount rate on UPI transactions. Proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Nation remembers freedom fighter Shahid Bhagat Singh on his birth anniversary today. Sensex plunges nearly 1,000 points amid surge in crude oil prices. Nifty tanks 306 points. And in Asian Games, India bags silver and bronze medals today in women's 25-meter pistol and under 78-kilogram kurash events. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के

0: साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए, तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
4: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
4: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी

0: आय में बढ़ोतरी हुई है।
1: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
0: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
0: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
4: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
5: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुंबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का

0: व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की गई। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार पछि पुनः स्वागत गर्दछौं एफएम 103.5 मेगाहर्जको तरंगमा आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रमा। श्रोताहरूले हामीलाई आकाशवाणी दार्जिलिङ 100.2 मेगाहर्ज, न्यूज ऑन एयर एप साथै ओटीटी वेब प्लेटफर्ममा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समय अहिले साँझको 5:05 भइरहेको छ र म यहाँहरूको साथमा छु सुनिल। त श्रोतगण, आजको तेस्रो अधिवेशनलाई निरन्तरता दिँदै सुरु गर्न लागिरहेछौँ फौजी श्रोताहरूको निम्ति कार्यक्रम जय जवान।

हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

ए पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

0: मैं
1: आप कौन साहब हैं?
0: ये खाकसा चीज को वजाहत मिर्जा के नाम से याद करते हैं। शहर लखनऊ का ही बाशिंदा हूँ। तकदीर कमजोर, पाँव में बेड़ियां जाए के वतन से परदेश ले गई। वापस आकर देखता हूँ तो शहर ही बदल चुका है, न इंसान मिलता है न मकान। एक अजीज ने आपका पता देकर यहाँ भेजा है, किस्मत आजमाई के लिए हाजिर हुआ हूँ, जहमत मुआफ फरमाइएगा।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए।
0: शुक्रिया।
1: ये मिर्जा साहब है बेटी, मकान के लिए आए हैं। ये मेरी बेटी शांति है मिर्जा साहब।
2: नमस्ते।
0: जीती रहो, जीती रहो।
1: क्यों बेटी?
2: मेरे ख्याल में मिर्जा साहब ठीक रहेंगे।
0: बाबा, बाबा, मुझे यकीन था कि अजीजा जरूर यही कहेगी। जी हो, जी हो, जी हो।
1: मिर्जा साहब, सच पूछिए तो हमें आप ही जैसे बुजुर्ग की तलाश थी।
0: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जय नसीब।
1: मगर कमरा हम पेइंग गेस्ट की हैसियत से देना चाहते हैं।
0: पेइंग गेस्ट? किबला, ये पेइंग गेस्ट क्या चीज है?
1: यानी कमरे के साथ फर्नीचर हमारा, खाना और नाश्ता भी हमारे साथ।
0: जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अंधे को क्या चाहिए दुआ से? किबला, मुझे तो आप जैसे लोगों की तलाश थी।
1: और किराया होगा 100 रुपए माहवार।
0: बस, क्या जुल्म करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं।
1: तो मंजूर है ना आपको?
0: मंजूर? कमाल करते हैं आप। दिगंबर नाथ जी, इलाची खिलाओ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुन्दै हुनुहुन्थ्यो गाउँले सभा र अबको केही क्षणमा सुन्न सक्नुहुनेछ आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको प्रादेशिक समाचार।

0: ते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
3: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
5: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
6: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
5: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
7: So if you want to make more export,
8: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
7: 1 year before.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
9: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
10: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
9: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
10: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
11: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
10: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा

0: नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1048 या 23717117 या फिर 23717106 और 233-1-4444 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी,
1: नमस्कार।
2: कौन से अस्पतालों में।
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत PMJAY की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों, किसी भी उम्र के हों,

0: वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के हो तो आप भले किसी भी आय वर्ग पे हो, आय वर्ग के हो, आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करने कर सकते हैं। आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहां तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है, जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो आईपीडी सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशलिटी के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत। इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है। आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा। आप जाएं, अपना कार्ड दिखाएं, पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
1: जी, हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए। ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई, लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं, राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
2: मनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार
2: विशेष जी, ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से, या फिर 1-4-555-14 ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
3: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले, और पता कैसे चलेगा? क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
0: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप पीएमजे के जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए एक कुछ परिवार जो है पीएमजे के अंतर्गत आते हैं, और अगर आप उस परिवारों में नहीं आए हैं, तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिमकेयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि पीएमजे स्कीम जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब आप इस स्कीम के और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं, और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या पीएमजेएव के अंतर्गत कवर्ड है, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार पीएमजेए के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर पीएमजेए के अंतर्गत आता नहीं है, तब आप देखिएगा कि आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है, उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप पीएमजे के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1455 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद खान। कहिए, क्या है आपका सवाल?
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
4: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
1: जी,
4: मेरा छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
1: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
0: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों, ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि एसईसीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं, उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजेए का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
1: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
5: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
5: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी
1: जी।
5: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, कोई जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है वो 6th में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात ये है कि हम 5 में से 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है, लेकिन वो बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा? तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
0: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार है उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, या उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का, या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे
1: जी। एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए अपना।
6: मुनीश जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
6: मैं धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
6: मेरे 2 सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है, क्या नहीं बन सकता? और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था
1: जी जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है, लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीजन बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना

0: के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है जैसे ही वो 70 वर्ष पार करते हैं पूरा करते हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है, इस विषय में बताइए।
0: ये तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं जो सिटीजन हैं नागरिक हैं उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब है डायग्नोस्टिक सेंटर है जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल भी हैं इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना ताकि जो भी मरीज हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं कोई डॉक्टर की डॉक्टर पर्ची लिखते हैं या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज किया जाए ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागज़ों को एक साथ रखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागज़ों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के उन सब की जानकारी हो साथ में ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा 2 साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे UPI के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी जो आभा नंबर कहते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभ आभा नंबर बन चुके हैं और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज है डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सके।
1: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कि जो रोगी हैं मरीज हैं उन्हें अपनी पर्चियां पुरानी रिपोर्ट फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की ज़रूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी कहिए क्या है प्रश्न आपका।
2: हाँ जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा तो 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर सरकारी हॉस्पिटल सभी इससे जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया है एक्सेप्ट नहीं करते हैं स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है इसके बारे में।
0: गुरुनाथ जी

0: प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आंख के संबंधित रोग और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है और कैटरैक्ट ऑपरेशन है और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, आई मीन 1961 अलग अलग प्रोसीजर है। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर है। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग सभी बीमारियां जो हैं इसमें कवर्ड है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएं या दिल्ली आएं या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1-4-555 14555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांस, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर, एक मतलब बहुत ही जल्द इस तरह के कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे। आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 14555 14555। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका।
2: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद, पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो आयुष्मान में कवर हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
0: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या 2 बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको जाने की अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहां तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूंगा आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस कभी कभी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्कर साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तेरा जिक्र छेड़ूं तो लफ्ज सवर जाते हैं, तेरा नाम लिखूं सफ़े निखर जाते हैं, तुझे सोचूं तो ख्याल भी गजल हो जाते हैं, तुझे देखूं तो वक्त भी ठहर सा जाता है। तुम मिले तो दिल को घर मिला, मेरे वीरान ख्वाबों को शहर मिला, तू मिला तो सुकून मिला, अब ना कोई शर्त है ना कोई हिसाब है, तेरे बगैर ये जिंदगी अजाब है, हमने चाहा तुझे इस हद तक के तेरे पास ही होगा, जरा फिर से देख, मेरे सीने से दिल आखिर गया तो कहाँ गया।

एक तमन्ना है कि फकत मुझ पे ही मेहरबान रहो। तुम किसी और को चाहो तो बुरा लगता है। मेरी चाहत का तकाजा है कि मेरे साथ रहो। गैर का हाथ जो थामो तो बुरा लगता है। शब वो रोज परवाह है तुम्हारी। तुम किसी और को सोचो तो बुरा लगता है।

ये मेरी रूह तरसती है तुम्हारी खुशबू को, तुम कहीं और जो महको तो बुरा लगता है। क्या करूं मैं, आदत हूं उसकी वो जरूरत है मेरी, मैं धड़कन हूं उसकी वो जिंदगी है मेरी, वो ख्वाब है मेरा उसकी मोहब्बत

0: जमाने हो जाएं जिसे पढ़ के हम कुछ ऐसा तो एक बार लिख। तू बस मोहब्बत लिख, कोई सवाल मत लिख, मेरे नाम के साथ अपनी हर बात लिख। अगर हाथ में हाथ हो तो उसे जिंदगी लिख, मेरे हिस्से में अपनी कायनात लिख। मुझे देखकर जो दिल में आए वो ख्याल लिख, ना फरियाद लिख ना कोई शिकायत लिख। मुझे दिन लिख तो खुद को मेरी रात लिख, लिखना है तो बस इतना लिख, मुझे अपना हमसाया लिख। सुनो मुझसे ये अब नहीं होता, दलीलें दूं मिसालें दूं, तुम देखो ना मेरी आंखों में लिखा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है।
1: प्यार सिखा दूं?
2: सिख

ऐसा लगता है हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को हमारा पता याद है। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसने रुख से हटा के बालों को, रास्ता दे दिया उजालों को। जाते जाते जो मुड़ के देख लिया और उलझा दिया ख्यालों को। एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसने हल कर दिया सवालों को। मर गए हम तो देख लेना तुम, बहुत याद आएंगे दिल वालों को।

एक कदम उठ गया रवानी में, दर्द फिर आ गया कहानी में। कोई तो चांद को सिखाता है डूबना रोज रोज पानी में, सिर्फ तूने निगाह फेरी तो मोड़ आ गया कहानी में। उसकी आंखों में हमने डूब कर देखा, तिश्नगी बढ़ गई है पानी में।

चलो आओ मिलकर हम बनाएं एक नई दुनिया मोहब्बत की। तुम अदा बनकर मेरी आंखों में रहना, मैं सुकू बनके तुम में, तुम दवा बनके मेरी सांसों में रहना, मैं शिफा बनके तुम में, तुम वफा बनके मुझ में समा जाना, मैं मोहब्बत बनके तुम में। उसने कहा मंजिल मुश्किल है, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। उसने कहा मोहब्बत हो जाएगी, हमने कहा चलो मोहब्बत करके देखते हैं। उसने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, हमने कहा मोहब्बत वफा है। उसने कहा छोड़ तो नहीं जाओगे, वादा करो हमसे, हमने कहा जिंदगी बेवफा है।

परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया।